கேட்ட நிகழ்ச்சி புலரும் பொழுது. வந்தே மாத்திரம்.

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना

0: और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh,

0: दण्डः सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति. विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति. चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्.
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया. स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर.
0: राज्यसभायां षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य राष्ट्रियगौरव अपमाननिवारणसंशोधनविधेयकं पारितम्. एतत् विधेयकं राष्ट्रियगौरव अपमाननिवारण अधिनियमे एकसप्तत्यधिक एकोनविंशतितमे संशोधनं करोति. अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिकसुरक्षाप्रदानम् इत्यस्ति. एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः. उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति.
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है. वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है. हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम.
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते. अस्माद्धेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्. श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते. अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति. अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेशसर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः.
3: நேரம் 7 மணி. ஆகாஷவாணி சென்னை வானொலி நிலையம்.

0: Yes, listeners, today the sacred month of Sawan begins, ushering in a season of devotion, spirituality, renewed faith. Coinciding with the monsoon, this auspicious month holds immense significance for millions of devotees across the country, especially those who worship Lord Shiv. Throughout Sawan, devotees observe fasts, offer prayers, and participate in religious ceremonies with deep reverence.
1: बिल्कुल, अब अगले कई दिनों तक रिमझिम फुवारे मिट्टी को, मन को और जीवन को भिगोते रहेंगे और साथ में ही समागम होगा भक्ति का। और आज की इस रोशन सुबह में हमारे श्रोताओं का दिल से स्वागत और अभिनंदन, सरबजीत कौर और फरहत नास का।
0: जी फरहत, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ग्रेट वार्म वेलकम टू ऑल आवर लवली लिसनर्स. Listeners, you are tuned to the News Magazine program Aaj Savere, where we give you the latest in national and international news, Metro City updates, and of course, towards the end of the program, Farhat and myself together will share details of some historical information. We'll also talk about some personalities who make today's day, that is 30th of July, so important and memorable.
1: जी सरबजीत, लेकिन आइए सबसे पहले समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं. लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र

0: शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Majalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. Polling, which began at 7 a.m., will continue till 6 p.m. In Bihar, the by-election for the Bankipur seat was necessitated after BJP President Nitin Naveen vacated the assembly seat following his election to Rajya Sabha. In Gujarat's Majalpur assembly seat, BJP has fielded Satish Patel, while Congress has pitted Bakebhai Rabri against him. Election Commission has introduced 100% webcasting, mobile deposit counters outside polling stations, and C-Vigil facilities for online code of conduct complaints. In Madhya Pradesh, the Datia seat became vacant due to the disqualification of Rajendra Bharti.
0: बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का फर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Export Promotion Councils and Industry Associations in New Delhi to review measures aimed at strengthening India's export ecosystem. Mr. Goyal said the meeting followed discussions on enhancing the country's global competitiveness. During the meeting, the minister reaffirmed the government's commitment to building a stronger, more competitive and future-ready export ecosystem to support India's economic growth and realize the vision of Viksit Bharat. The meeting was focused on leveraging free trade agreements, promoting the Brand India initiative through quality-led exports, improving logistics and trade facilitations, expanding market access, and creating new opportunities for MSMEs and new exporters.
0: Shravan mahine ki varshik Kavad yatra aaj se shuru ho rahi hai. Kavad yatriyon ki suvidha aur suraksha ke liye Uttarakhand aur Uttar Pradesh sarkar ne vyapak vyavastha ki hai. Uttar Pradesh mein Kavad yatra ko dekhte hue kai zilon mein yatayat margon mein परिवर्तन किया गया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने गोरखपुर से 2 विशेष श्रावण मेला ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक विशेष व्यवस्था भी की गई है।
1: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu reviewed the country's preparedness for the adoption of sustainable aviation fuel, SAF, and implementation of the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA. Chairing a high-level meeting in New Delhi, the minister reviewed the country's roadmap for SAF production, blending, carbon accounting, and supply chain development ahead of the mandatory phase of CORSIA from 1st of January next year.
0: जी अब बात कर लेते हैं खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादु गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगनत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू और शर्मिला धनखड़ के स्वर्ण पदक जीतने के बाद दिलीप महादेव का भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और श्रोताओं अब बारी है महानगरों की खबरों का रुख करने की, तो सरबजीत सबसे पहले आपसे जान लेते हैं चेन्नई में क्या है खास।
1: जी, reforms in the process for reclaiming underlying shares and unclaimed dividends worth about 1 lakh crore rupees were pending with the IEPF under the Union Ministry of Corporate Affairs last year. Addressing students at Chennai, Sanjeev Sanyal, member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, said that a significant portion of the 1 lakh crore rupees, including unclaimed dividends, has since been cleared. He said that there were 25 steps spread across 3 different portals, but the government unified the process through a single portal and reduced the number of steps from 25 to 14, increasing the number of individuals. Craftsman Automation Limited, a manufacturer of auto components,

0: Alliance plans to invest 250 crore rupees to expand its aluminium products manufacturing capacity at Hosur to meet rising demand from automotive original equipment manufacturers in South India. The company will undertake the expansion in two phases, with phase 1 involving an investment of 100 crore rupees and phase 2 requiring 150 crore rupees. And Farhad, what is the news that you have for our listeners today?
1: जी सरबजीत, यातायात की हम खबर देंगे. आज राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, जीटी रोड और उनसे जुड़े मार्गों पर भारी परिवहन वाहनों की आवाजाही को सीमित या दूसरे मार्ग पर आज मोड़ा जाएगा. यातायात पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने के लिए और सड़क के किनारे गाड़ी पार्क न करने का आग्रह किया है. वहीं दिल्ली सरकार ने डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर हंसराज बवेजा, डॉक्टर एस के टंडन और विनोद कुमार मोंगा को दिल्ली मेडिकल परिषद का सदस्य नियुक्त किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये नियुक्तियां परिषद के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी.
0: एंड लेट्स हियर व्हाट्स कमिंग अप फ्रॉम बेंगलुरु. कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार यस्टरडे सेड द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपील बिफोर द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA अगेंस्ट द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी order directing Karnataka to release Kaveri water to Tamil Nadu. The Chief Minister said consultations had been held with the Advocate General, legal experts and senior officials, and preparations were underway to file the appeal. He said the issue would also be discussed with opposition leaders after his return to Bengaluru. Karnataka Power Corporation Limited KPCL has stepped up thermal power generation and made arrangements for additional coal supplies to meet the state's electricity demand amid deficient rainfall and reduced hydropower generation. A KPCL team led by Managing Director Rajendra Cholan visited Western Coal Fields Limited and the Baranj captive coal mine in Nagpur, Maharashtra, and secured additional coal supplies for the Raichur and Baleri thermal power stations. And Farhad, what's the news from Mumbai today?
1: जी, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित एक सप्ताह के महास्वास्थ्य शिविर से राज्य भर में लगभग 95,000 लोगों को लाभ मिला है. 22 से 28 जुलाई तक चले इस अभियान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच, रक्तदान अभियान और कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी शामिल.
0: And news from Hyderabad now. Telangana Chief Electoral Officer C. Sudarshan Reddy has clarified that the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls is strictly intended to prepare an accurate voter list and has no link to government welfare schemes. Reviewing the progress with district election officers, the Chief Electoral Officer emphasized that only 5 days remain to achieve 100% digitization of enumeration forms by the August 3 deadline. Currently, 76% of the overall digitization is complete, with rural areas reaching 90% and several assembly constituencies achieving full completion. Furthermore, election authorities were instructed to expedite the rationalization of polling stations to ensure family members are assigned the same location. To maintain transparency, officials must obtain signatures from political party representatives on lists of absent, shifted and deceased voters. And Farhad, what's the buzz from Kolkata today?
1: जी, पश्चिम बंगाल सरकार ने सरबजीत सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष को बदल दिया है. पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और 1987 बैच के IAS अधिकारी नवीन प्रकाश को शीर्ष पद पर नियुक्त किया है. प्रकाश राज्य सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. आधिकारिक निर्देश के अनुसार आयोग वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, पदोन्नति नियम, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा करके जरूरी बदलावों का सुझाव देगा.
0: And Farhad, to help our listeners prepare their day just a little better, let's update them about the weather forecast for today.
1: जी बिल्कुल, बारिश के लिए तैयार हो जाइए. आज हमने शुरुआत में ही वैसे भी बता दिया, सावन आ चुका है और आज मौसम विभाग ने भी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में बारिश का दौर रहेगा. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं कोलकाता की अगर बात करें तो बारिश के साथ आंधी की

0: भावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
1: चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 29 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 22 डिग्रीज, मैक्सिमम मे गो अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू हवर इन द रेंज ऑफ 23 डिग्रीज टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 degrees Celsius. And listeners, today is International Day of Friendship. Friendship is one of life's greatest treasures, a bond built on trust, understanding, and mutual respect that enriches our journey and strengthens our communities. The International Day of Friendship was proclaimed in 2011 by the UN General Assembly with the idea that friendship between people, countries, cultures, and individuals can inspire peace efforts and build bridges between communities. The resolution places emphasis on involving young people as future leaders in community activities that include different cultures and promote international understanding and respect for diversity.
0: बिल्कुल, और इसीलिए शायद सरब जी फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है, क्योंकि जो दोस्ती का एहसास है वो जहाँ मतलब उनके बिना अधूरा होता है। दोस्त जो होते हैं वो हर चीज़ समझ जाते हैं, रोते को हंसा देते हैं। अगर आप किसी मुश्किल हालात में हो तो वो आपसे ऐसे संपर्क करते हैं, वही आपका सच्चा दोस्त कहलाता है जब वो आपकी दोस्ती में आपको साथ निभाते हैं।
1: And listeners, today is also the World Day Against Trafficking in Persons. This day is observed to protect victims and improve cross-border judicial and law enforcement cooperation. The theme for this year is Trapped Behind the Scam, which draws attention to a rapidly expanding form of human trafficking in which transnational organized crime groups exploit people to carry out industrial-scale financial fraud.
0: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात 1733 की, दुनिया का पहला फ्रीमेसन लॉज अमेरिका में आज ही के दिन स्थापित हुआ।
1: 1921, ऑन दिस डे इंसुलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एज अ पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट बाय द कैनेडियन साइंटिस्ट सर फ्रेडरिक जी बैंटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट।
0: सन 1930 में एनबीसी रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ।
1: 1930, on this day, Uruguay defeated Argentina to win the first World Cup in football.
0: सन 2012 में उत्तरी ग्रिड में खराबी के चलते दिल्ली सहित 7 राज्यों में बिजली गुल। और सन 2024 में केरल के वायनाड में भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मौत आज ही के दिन हुई थी।
1: On this day in the year 2020, NASA began its Mars 2020 mission with the launch of the rover Perseverance from Cape Canaveral in Florida.
0: और श्रोताओ, इतिहास के बाद आइए अब जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज हमारी फेयर लिस्ट में। सबसे पहले इसमें कौन है सरबजीत?
1: यस लिसनर्स, वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी। टुडे इज हर बर्थ एनिवर्सरी। शी वाज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोशल रिफॉर्मर एंड पद्म भूषण अवार्ड रिसिपियंट।
0: जी बिल्कुल, भारत की पहली महिला विधायक रही, प्रथम महिला सर्जन रही और एक महान समाज सुधारक भी रही। इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में दाखिला लिया और इस विभाग में दाखिला लेने वाली वो पहली भारतीय छात्रा भी बनी। इन्होंने सर्जरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। देवदासी प्रथा के उन्मूलन और बाल विवाह को रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून बनवाने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई।
1: फरत, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी ऑल्सो स्टार्टेड द कैंसर रिलीफ फंड एंड दिस fund has now developed into an all-India institution combining therapy and research on cancer and attracting patients from all over India. In fact, Dr. Muthu Lakshmi also became the first chairperson of the State Social Welfare Board.
0: Ji Sarabjit, iske alawa inhone besahara aur anath mahilaon ke aashray aur punarvas ke liye Avai Home ki sthapna bhi ki thi, to bahut bada yogdan inka raha.
1: Listeners, next we are paying tributes to Govind Chandra Pandey. Today is his birth anniversary. A well-known thinker, historian and Sanskritist of the 20th century, Govind Chandra Pandey was an exceptional scholar of many languages like Sanskrit, Hebrew and Latin, and a famous author of many books and also a Hindi poet.
0: और श्रोताओं, आज जाने माने गायक सोनू निगम का भी जन्म

0: दिन है इन्होंने कन्नड़, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी और छत्तीसगढ़ी में भी गाने गाए हैं।
1: Yes, indeed, you mentioned a very you know versatile name, Farhad. Sonu Nigam, today is his birthday, so many good wishes to Sonu Nigam from the entire team of Aaj Savere, the great playback singer, music director, dubbing artist and actor. And I'm sure, Farhad, you've brought some beautiful numbers also, picturized on Sonu Nigam.
0: जी बिल्कुल, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनू ने अपना पहला गाना दूरदर्शन के धारावाहिक तलाश के लिए गाया था, तो आइए सुन लेते हैं उसी का टाइटल सॉन्ग।

0: आकाश है।
1: Sonu Nigam has been awarded one National Film Award, two Filmfare Awards and two Filmfare Awards South and four IFA Awards for Best Playback Singer.
2: और सरबजीत फिल्म जीत के गाने के लिए भी उन्हें काफी सराहा गया। करिश्मा कपूर और सलमान खान पर फिल्माया ये गीत आज भी युवा लोगों की पसंद है।

0: Listeners, another birthday wish for the great Sonu Sood, film producer, humanitarian, model, and he largely works in Hindi, Telugu and Tamil films. Sonu Sood is known for his performances as the negative lead in most of his films. We have this dialogue for you.
1: जंगल में रह के शेर से बैर, आदमी हम थोड़े जटिल किस्म के हैं भैया, सोच लो।
2: जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा।
1: बहुत भरोसा है अपने आप पर।
2: भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत भी।
0: So many good wishes to Sonu Sood from the entire team of Aaj Savere. Sonu Sood in the year 2009 received the Andhra Pradesh State Nandi Award for Best Villain and the Filmfare Award for Best Supporting Actor Telugu for his work in the Telugu blockbuster Arundhati. Listeners, today we are also remembering the great Sulochana Lakhtar. She was, you know, known famously as the great Sulochana, and she was the Indian actress of Marathi and Hindi cinema. Sulochana acted in 50 films in Marathi and around 250 films in Hindi. That's a great number, Farhat.
3: जी बिल्कुल, करियर की शुरुआत में सुलोचना ने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया. इन फिल्मों में वो अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नाजर हुसैन जैसे एक्ट्रेस के अपोजिट नजर आई. सुलोचना ने अपने करियर में कई मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस की माँ या दादी की भूमिका निभाई. इसके अलावा पत्नी की भूमिका में उन्होंने अहम किरदार निभाया. 1960 और 70 की अगर बात की जाए तो देवानंद, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स की वो माँ के रोल में नजर आई. 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने सुलोचना को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान किया. इसके अलावा उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2004 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. और इसके अलावा दिल्ली दूर नहीं, न्याय की तलाश में उनकी एक यात्रा की कहानी थी तो जो 1951 में आई, तो इसी फिल्म से हमने एक अंश निकाला.

0: वाला है, आइए आपको सुनाते हैं।
1: ये क्या
2: साड़ी अच्छी है ना?
1: नहीं।
2: क्यों?
1: तुम फिर कर्जा लेकर आए हो।
2: कर्जा नहीं बेला, मैंने बोनस मिला।
1: बोनस वोनस मैं सब जानती हूँ,
2: मगर बेला तीज त्योहार के दिन तेरे बदन पे चीथड़े अच्छे नहीं लगे।
1: मुझे कमाई के चीथड़े ही पसंद है, कर्जे की किनखा पसंद नहीं। इसे वापस करके मैंने पहनूंगी।

0: And Sulochana is remembered for her great performance in movies like Duniya, Baharon Ke Sapne, Doli, Kati Patang, Mere Jeevan Sathi. Listeners, today we are paying tributes to the great Giorgio Vasari, an Italian Renaissance painter, architect, art historian and biographer, known for his work Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects, considering the ideological foundation of Western art historical writing, and still much cited in modern biographies of the many Italian Renaissance artists he covers, including Leonardo da Vinci and Michelangelo. Listeners, today is the death anniversary of Bharathan. Filmmaker, artist and art director, Bharathan is noted for being the founder of a new school of filmmaking in Malayalam cinema, along with Padmarajan and K.G. George in the 1980s, which created films that were widely received while also being critically acclaimed.
1: और अब हम लोग याद कर रहे हैं मंदाकिनी को. मंदाकिनी हिंदी सिनेमा की वो खूबसूरत अदाकारा रहीं जो अपने ज़माने में फिल्म मेकर्स की बतौर एक्ट्रेस पहली पसंद मानी जाती रहीं. मंदाकिनी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही राम तेरी गंगा मैली, जिसमें वो अभिनेता राजीव कपूर संग नजर आई. एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म थी जिसके सारे गाने अपने आप में कल्ट रहे, लेकिन एक गीत ऐसा भी रहा जो पहाड़ों की पहचान माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि यहाँ कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है.
2: पर साहिब, बगैर जान पहचान के गंगा को कैसे ले जाओगे
3: इस लुटिया में?
2: साहिब, सच बताओ, तुम इंसान हो या देवता?
3: क्यों?
2: शंकर जी ने तो अपनी जटा में गंगा मैया को जाने कब समा लिया था. अब आज तुम आए हो जो अपनी लुटिया में मुझे ले जाओगे?
3: तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा?
2: अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो, मैं ही तो हूँ गंगा.

0: indeed many, many good wishes to Mandakini on her birthday from the entire team of Aaj Savere.
1: बिल्कुल सरबजीत, और इसके अलावा उन्होंने आग और शोला, जाल, मजलूम और प्यार करके देखो जैसी काफ़ी लोकप्रिय फिल्में निभाई।

0: celebrities. We have, communicated birthday wishes to some great names like Sonu Nigam, Sonu Sood, Mandakini. We've paid tributes to Dr. Muthulakshmi Reddy, Govind Chandra Pandey, Sulochna, and Georgia Vasari and Bharatan Parameshwaran. We also talked about the International Day of Friendship, where we spoke about the importance of, you know, respecting diversity, promoting international understanding, and this time of global unrest. You know, we've seen war almost everywhere. So the importance of such day enhances in such times where we talk about cooperation, where we talk about humanity, where we talk about respect for diversity, where we talk about building peace efforts, bridging gaps between communities, talking about the existence of variety of cultures, variety of dynamic and different individuals, so on and so forth. So this day fosters friendship between people, not only between people, it talks about friendship between countries, accepting different cultures, and creating an ecosystem where diversity is respected. We also, you know, simultaneously spoke about today being the World Day Against Trafficking in Persons. Now, this theme is also very well connected with the International Day of Friendship, where we respect humanity, where we respect the existence of human beings. And we also add in another story which, you know, has just come in. Representatives of various tribal communities who play a significant role in the Bastar Dashera festival in Chhattisgarh will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today. The 164-member delegation includes Pargana, Manjis, Chalkis community leaders, renowned tribal youth artists associated with Bastar Pandam, representatives of tribal communities, and Padma Shri awardees from Bastar. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai will also be present on the occasion.
1: Aur Sarav ji, iske saath hi ghadi ki sui hai ishara kar rahi hai ki hame apne shrotaon se kehna hoga alvida, aur ummeed karte hain ki aaj ka ye ank aapko zarur pasand aaya hoga aur aapne bahut pyare pyare gaanon ka aanand liya hoga.
0: Yes, listeners, stay tuned, for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin followed by morning news in English. Thank you for tuning in. Namaskar.
1: Namaskar.
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो-दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
4: हर घर सूर्य घर.
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया. विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान. बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी. बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया. लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि. श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास. और अब समाचार विस्तार से. लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक में प्रश्न पत्र लीक

0: मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी

0: इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के

0: साथ आठवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत

0: समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर 30-47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bankipur Assembly constituency in Patna. Our correspondent reports that voters have been arriving at polling stations since early morning to cast their votes.
4: Polling is progressing peacefully across all 422 polling booths of 164 polling stations in the Bankipur Assembly constituency. Polling will continue till 5 p.m. A traditional stronghold of Bharatiya Janata Party, the seat is witnessing

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों पर 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
2: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट 1 से अधिक क्षमता वाले, जबकि 387 पैनल 2-3 किलोवाट 1 श्रेणी में और 103 पैनल 1 किलोवाट 1 तक की क्षमता वाले हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित

0: सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
1: कावड़ पटरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख घाटों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
2: हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कावड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो।
1: कावड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: global trade routes. Orissa remains on high alert as swollen rivers continue to threaten vast stretches of the state, even as the India Meteorological Department has forecast another spell of heavy to very heavy rainfall, with the Mahanadi expected to witness a medium flood and several river basins under close surveillance. The administration has intensified relief and preparedness measures. The annual Kavar Yatra for Shravan month begins today. During the Kavar Yatra, a large number of people visit pilgrimage sites such as Haridwar, Gomukh and Gangotri in Uttarakhand to fetch holy waters of Ganga River. Uttarakhand and Uttar Pradesh governments have made elaborate arrangements to manage a large number of pilgrims. Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh today extended warm greetings to countrymen on the auspicious beginning of the holy month of Shravan. India scripted history in para-athletics at the Commonwealth Games, securing a historic 1-2 finish in the men's 100 metres T47 final as Dilip Mahadu Gavit won the gold and Mohammad Basil claimed the silver. Gavit clocked a games record and season best time of 10.71 seconds to take the top spot, while Basil produced his season best 10.83 seconds. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। अमेरिका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद का दोषी ठहराया। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासित ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान में कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से उत्पन्न अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
2: We're growing at 7.7% last year.
3: पिछले वर्ष हमारी विकास दर 7.7% रही, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब तब हुआ जब दुनिया भर में दो युद्ध चल रहे थे और बहुत ज्यादा अनिश्चितता और भू राजनीतिक संकट का माहौल था। पिछले वर्ष के ज्यादातर समय में अमेरिका को किए जाने वाले हमारे ज्यादातर निर्यात पर 50% टैरिफ भी लगा हुआ था, फिर भी 26 मार्च को खत्म हुए साल में हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई।
2: In the year ended March 26.
1: अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही निष्क्रिय कर दिया गया और किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बलों पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। सेंटकॉम ने कहा है कि 3 दिनों में अमेरिकी सैनिकों और सऊदी तेल केंद्रों पर 30 से अधिक ड्रोन दागे जाने के बाद इस अभियान में हथियार डेपो और रसद स्थलों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने भी कहा है कि उसने अपने पूर्वी प्रांत में तेल केंद्रों को निशाना बनाकर हमला करने वाले कई ड्रोन को रोका है और इसके लिए इराक में ईरान समर्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।

ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका के मिसाइल भंडार में कमी आने की खबर है। एक थिंक टैंक सीएसआईएस की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीनों में अमेरिका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट और थार वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल किया, इससे इन मिसाइलों का भंडार काफी घट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 2,200 पैट्रियट और 452 थार मिसाइलें थीं। अब पैट्रियट मिसाइलों की संख्या घटकर 827 से कम, जबकि थार मिसाइलों की संख्या 278 से भी कम रह गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की संघीय अदालत ने लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले व्यक्ति को आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सहित सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फीथिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। रूस के सरकारी मीडिया ने कहा है कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप लगाया है। दुरोव को अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
1: संघीय सुरक्षा सेवा का आरोप है कि टेलीग्राम उन चैनलों, चैट और बॉट्स को हटाने में विफल रहा जिनका कथित तौर पर यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा रूस के अंदर हमले की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों का ये भी दावा है कि टेलीग्राम की डेटिंग सेवा का इस्तेमाल रूसियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में किया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी किया गया है। रूसी कानून विशेषज्ञों के अनुसार दुरोव को इंटरपोल के माध्यम से प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: जापान की आबादी लगातार घट रही है। जापान के गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में जापानी नागरिकों की आबादी पहली बार 12 करोड़ से नीचे आ गई है। 1 जनवरी तक जापानी नागरिकों की संख्या करीब 11 करोड़ 97 लाख दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 9,17,000 कम है। यह 1968 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। वहीं जापान में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़कर 40 लाख से ज्यादा हो गई है, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है। सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में घटती जन्म दर के कारण जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। जापान के 47 प्रांतों में सिर्फ टोक्यो में स्थानीय आबादी बढ़ी है। विदेशी नागरिकों को शामिल करने पर जापान की कुल आबादी करीब 12,37,00,000 है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5,63,000 कम है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण के थीम का शुभारंभ किया। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच का 10वां संस्करण 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित IMC 2026 में वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, दूरसंचार ऑपरेटर, नवाचार, स्टार्टअप, निवेशक, शोधकर्ता और नीति निर्माता भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आकार देने के लिए एक साथ काम करेंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि सीमाओं के बिना विस्तार थीम वैश्विक लाभ के लिए दूरसंचार, नवाचारों, प्रौद्योगिकियों और डिजिटल समाधानों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बासित को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने खेल उत्कृष्टता का एक यादगार अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि दोनों पैरा एथलीटों का ऐतिहासिक स्वर्ण रजत पदक जीतना भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए मील का एक पत्थर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर फिर से

0: இடம்பெற்றது சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी. मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है.
2: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया. स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है. श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है. उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है. श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है. बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 9 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 4.61%, गुजरात के मंजलापुर सीट पर 6.06% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 12.94% मतदान की खबर है. अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं. ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी. राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में दिलीप महादो गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलीप महादो गावित और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ को पदक जीतने पर बधाई दी. भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के सहित कुल 15 पदक के साथ 8वें स्थान पर है. श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है. गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आज से श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का यह पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा. रक्षा मंत्री ने भी

पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई हिस्सों में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

பாய்ப்பா.

0: இடம் பெற்றது மெல்லிசை. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र

0: सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में

0: मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी बॉडी एनी

0: agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship, any associates, any subcontractors, any provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination.
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव

0: के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: प्रकृति पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संसद ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज ये विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा कल ही इसे पारित कर चुकी है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए

0: स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सांसदों से दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के कुशल क्षेम की भी कामना की। पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस व्यक्त करते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा की वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 20%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 48% मतदान दर्ज हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थेरी मौथो और जॉर्जिया के राजदूत वक्तंग आउशली से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में परिकल्पित लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की दमनात्मक कार्रवाई जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2-3 दिन तक तेज वर्षा की संभावना है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ओंटारियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana, and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, Lok Sabha was adjourned for the day. In the Rajya Sabha, discussion is underway on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, moved the bill. He said paper leak is a serious issue and several incidents were reported from various parts of the country in different state governments and the previous governments at the centre. Initiating the discussion, leader of the opposition Mallikarjun Kharge said the government has made only cosmetic changes in the new bill and the proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. He said though the Congress supports the proposed bill, but it lacks very stringent provisions to ensure transparent and paper leak-free examinations. The bill has been already passed by the Lok Sabha. Prime Minister Narendra Modi today met with the members of Parliament from Arunachal Pradesh and Nagaland at the Parliament House. In a social media post, Mr. Modi said the discussions focused on the prevailing flood situation in both the states. The Prime Minister said the central government will keep working with the respective state governments to address the challenges. He also prayed for everyone's well-being and safety. In a social media post, Parliament

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: grade 2 sub-divisional engineer on deputation basis, including short-term contract. The posts are General Central Service Group B, gazetted non-ministerial positions available in the CWC offices located across India. The selected candidates will be placed in pay level 7 as per the 7th CPC. Eligible officers from central, state governments, union territories, public sector undertakings, statutory or autonomous organizations, recognized universities and institutes may apply. Candidates should possess a bachelor's degree in civil engineering or mechanical engineering, along with relevant experience. Applications along with required documents including APAS, vigilance clearance, integrity certificate and penalty certificate should reach the concerned authority within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions and application procedures are available through the official Central Water Commission website, that is at www.cwc.gov.in. The Indian Institute of Mass Communication are deemed to be university under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, has invited online applications for two posts of Assistant Registrar on deputation basis for its main campus in New Delhi. IIMC, with its headquarters in New Delhi and regional campus at Aizawl, Amravati, Denkanal, Jammu and Kottayam, is a premier institute for education and research in mass communication. Eligible government officers can apply for the post as per the prescribed eligibility conditions. The detailed advertisement, including pay scale, qualification, experience, application format and terms and condition, is available on the official IIMC website. Then the last date for submission of applications is 11th August 2026. For details, kindly do refer to the website at www.iimc.gov.in. I repeat, it is www.iimc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गांधीनगर गुजरात में आजीवन सदस्य के एक पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। आजीवन सदस्य के पास भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के लिए स्वीकार्य वेतन या ₹5,00,000 प्रति माह के समेकित वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प होगा। पद का विवरण और पात्रता शर्तें आर्थिक कार्य विभाग के अधीन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। वेबसाइट का पता है dea.gov.in। निर्धारित प्रारूप में पात्र उम्मीदवारों के आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उचित माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा संख्या 10042, कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली 110001 के पास 14 अगस्त 2026 से पहले पहुंच जानी चाहिए। अपूर्ण आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह लद्दाख आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, चिकित्सा विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा, रोग विज्ञानी, विकिरण विज्ञानी, अस्पताल अधीक्षक, प्रशासनिक एवं लेखाधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक और निजी सचिव। निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह से भरे हुए आवेदन, व्यावसायिक योग्यता, आयु, जाति और अनुभव प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ भेजे जाने चाहिए। पदों का विवरण, उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश और आवेदन प्रपत्र का प्रारूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा लेह की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.sovarigpainstitute.in। टाटा स्मारक केंद्र नवी मुंबई आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। चिकित्सा अधिकारी, ई क्लिनिशियन साइंटिस्ट,

0: सेल्युलर थेरेपी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक अधिकारी डी, वैज्ञानिक सहायक बी, वैज्ञानिक सहायक बी हिमेटोपैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी पैथोलॉजी, वैज्ञानिक सहायक बी रेडियो डायग्नोसिस। आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है, जो 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 7 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा स्मारक केंद्र की वेबसाइट sctrec.gov.in। आवेदन ऑनलाइन ही जमा करना अनिवार्य है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, सहायक प्रबंधक एचआर तथा चिकित्सा अधिकारी। विस्तृत जानकारी उपलब्ध है दिल्ली ट्रांसको की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.dtl.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अभी कुछ ही देर पहले आपने और हमने मिलकर सुना रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। और साथियों, अब वक्त हो चला है परिक्रमा कार्यक्रम का। कुछ ही देर में परिक्रमा कार्यक्रम हम मिलकर सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। मैं हूं सेल्फी रोजी और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। आज 30 जुलाई है और आज की ये शाम बेहद खास है, क्योंकि आज कैलेंडर का वो पन्ना हमारे सामने खुला है जो हमें अपनों के और करीब लाता है। आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ये एक ऐसा दिन है जो हमें दूरियां मिटाकर हाथ मिलाने की सीख देता है।

0: अनुजा, इस गाने के जो बोल हैं उसका एक एक बोल जो है वो कहीं ना कहीं दोस्ती की परिभाषा को सच करता नजर आता है.
1: Seriously, it creates goosebumps within
0: us. बिल्कुल अनुजा, क्योंकि दोस्ती जो है वो एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं. ये बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने और हर सुख दुख में साथ निभाने का नाम है. और आज का ये दिन उन्हीं खास दोस्तों के नाम है जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस उन मुस्कुराहटों, अनगिनत यादों और निस्वार्थ साथ का उत्सव है जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं. तो अनुजा, इस मित्रता दिवस पर आइए हम उन सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमारे कठिन दिनों को आसान बनाया, हमारी हार में हमारा हौसला बने रहे और हमारी हर छोटी बड़ी जीत पर हमने देखा कि उनके चेहरे पर सबसे ज़्यादा खुशी थी.
1: Yes, sir, Firozi, as you said earlier, keep meeting your friends and it's friendship which makes good times better and hard times easier.
0: जी.
1: True friends share laughs, build sweet memories and stay by our side through every season. True friends are never apart, maybe in distance but never in heart. Yes, it's International Day of Friendship today. So just go to a friend of yours or call him over or sit together with a cozy cup of tea or coffee in your hands and play to your favorite music or simply put on the radio and enjoy the moment right now with a fresh new episode of Parikrama along with Anuja and Sir Firozi.
0: Ji Anuja, aur sabse pehle karyakram ki shuruaat karte hain kuch headlines ke saath.
1: Ji haan.
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर

0: चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना।
1: Proceedings in Lok Sabha disrupted amid opposition ruckus over various issues.
0: सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश।
1: Polling underway for by-elections in 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh.
0: महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट।
1: एंड इंडियन मेंस टीम स्टॉर्म इनटू सेमीफाइनल्स ऑफ स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप्स इन कनाडा। And Sir Firozi, it's now time for our segment Dateline India,
0: जी.
1: in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will observe There are two topics to be discussed today, beginning of the holy month of Shravan and World Day Against Trafficking in Persons. To begin with, it's the first day of the holy month of Shravan today.
0: अनुजा, बारिश की पहली बूंदे, भीगी मिट्टी की महक, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और हर हर महादेव के जयकारे। सचमुच कहें तो अगर कोई एक महीना है जो प्रकृति की सुंदरता में लिपटी भक्ति का एहसास कराता है तो वो श्रावण का ही महीना है, जिसे हम लोग आमतौर पर सावन के नाम से भी जानते हैं।
1: So true, Sir Firozi, as Sawan arrives, it almost feels as though nature itself has joined the celebration. Trees turn greener, rivers flow with renewed energy.
0: बिल्कुल अनुजा, और वो जो ऊर्जा होती है जो नवीन होकर आसपास फैलती है, उसे कहीं ना कहीं हम अपने शरीरों में भी महसूस कर पाते हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो भारतीय कैलेंडर है उसमें सावन को सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक रूप से अहम महीनों में गिना जाता है, लेकिन अनुजा, भारतीय संस्कृति में इस महीने का इतना खास महत्व क्यों है?
1: Shravan is the fifth month of the Hindu lunar calendar and usually falls during the monsoon season. It derives its name from the Shravan Nakshatra, the star constellation that is prominent during this period.
0: और अनुजा, सबसे अहम बात यह है कि इस महीने के साथ ही भारत में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। इसके बाद कई सारे त्योहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, और ये लिस्ट जो है बहुत लंबी होती जाती
1: जी है। हाँ, and in many ways, Shravan serves as the spiritual gateway to this beautiful festive journey, as you just mentioned the different festivals.
0: Ji.
1: At the heart of this sacred month is the worship of Lord Shiv. Ancient scriptures describe Shravan as an especially auspicious time for prayer, meditation, self-discipline and also devotion.
0: इसके साथ ही भक्त जो हैं वो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं, और इसके साथ ही जाप किया जाता है पवित्र पंचाक्षरी मंत्र का।

0: But Sir Firozi, have you ever thought of it? Why is Shravan dedicated to Lord Shiv?
1: Ji.
0: The answer lies in the legendary Samudra Manthan. As gods and demons churned the cosmic ocean in search of the nectar of immortality, the deadly poison Halahala emerged first, threatening to destroy the universe.
1: और अनुजा ऐसे में पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया. देवी पार्वती ने विष को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और इस तरह उन्हें नाम मिला नीलकंठ का.
0: And it is believed that this divine act of sacrifice took place during Shravan. To soothe the intense heat of the poison, the gods continuously offered water to Lord Shiv. This is why even today devotees perform Jalabhishek, which is offering holy water to Shivlingam as a symbol of gratitude, faith and devotion.
1: और अनुजा बड़े ही खुले मन के साथ लोग इस महीने का स्वागत करते हैं. भारत के कई हिस्सों में बरगद और नीम के पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं. महिलाएं जो हैं वो गहरे हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, पारंपरिक लोक गीत गाती हैं. इसके अलावा हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे त्यौहार भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं. और जब बात हो रही है श्रावण के महीने की, तो देखते हैं कि झारखंड के देवघर में इसका स्वागत कैसे किया गया.
2: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम.
3: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर

में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।

0: गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
1: And Sir Firozi, beyond its spiritual significance, Shravan beautifully reflects nature's own rhythm. Arriving in the heart of the monsoon, it reminds us of renewal, gratitude, and the importance of living in harmony with the environment.
0: बिल्कुल अनुजा, भारत के उत्सव केवल कैलेंडर की तारीखों या धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं दिखाते, बल्कि ये जीवन को गहराई से जीने का एक माध्यम है। और सावन के आते ही कई सदियों पुरानी परंपराएं जो हैं, वो एक बार फिर जिंदा हो उठती हैं।
1: Of course, in a world searching for mindfulness, India has been living it for centuries, and that's the beauty of our culture, where devotion and joy always go hand in hand. And now, Sir Firozi, coming to our next topic, it's a World Day Against Trafficking in Persons. The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members. And these timeless words of Mahatma Gandhi reminds us that the strength of a nation is not measured only by its economy or technology, but by how safely and compassionately it protects those who are most at risk.
0: बिल्कुल अनुजा, इसी सच्चाई को दिखाते हुए मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आज मनाया जा रहा है, और ये कैसा दिन है जो हमें इस दुखद सच्चाई से रूबरू कराता है कि 21वीं सदी में भी दुनिया भर में आज भी लोगों को खरीदा और बेचा जा रहा है, उनके साथ कई तरह से धोखेबाजी की जाती है और उनका शोषण किया जाता है।
1: एंड एज नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट एली वीजल वंस सेड, वी मस्ट ऑलवेज टेक साइड्स, न्यूट्रलिटी हेल्प्स द ऑप्रेसर, नेवर द विक्टिम। Those words are as relevant today as ever.
0: बिल्कुल अनुजा, और बहुत से लोग जो हैं वो ट्रैफिकिंग यानी तस्करी को सीधा अपहरण से जोड़कर देखते हैं। हालांकि अगर आप रिसर्च आदि को अगर अनुसरण करें, उनको देखें, तो असलियत में काफ़ी हद तक इसकी शुरुआत अक्सर लोगों को बहलाने फुसलाने से या ऑनलाइन ग्रूमिंग का झांसा देकर या फिर नौकरी के झूठे ऑफर देने जैसे वादों से शुरू होती है।
1: एंड दैट इज़ वाई प्रिसाइजली अवेयरनेस इज़ आर स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड ट्रैफिकिंग takes many forms. Some victims are forced into labor at factories, some at construction sites, farms or homes, and some are trapped in sexual exploitation.
0: बिल्कुल अनुजा, और इसके अलावा बच्चों से जो है वो भीख मंगवाई जाती है, कई बार गैर कानूनी कामों में उनको लगाया जाता है, जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जाता है, और कुछ बच्चे जो हैं वो कर्ज के जाल में फंस कर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और कई सालों तक और कभी कभी तो पूरी जिंदगी भर नहीं उससे निकल पाते।
1: This is so sad, Sir Firozi. Yeah, this year's observance carries the powerful theme trapped behind the scam. The 2026 campaign shines a spotlight on one of the fastest growing forms of trafficking, people lured by fake overseas job offers only to find themselves imprisoned inside online scam compounds.
0: बिल्कुल अनुजा, और सच्चाई ने तब पता चलती है कि जिस तरह के करियर का वादा इनसे पहले किया जाता है, जॉब की लोकेशन पर पहुंचकर इनसे वो वादे तो पूरे नहीं किए जाते, बल्कि इसकी बजाय इन्हें धमकी देकर, इनके साथ हिंसा करके और लगातार निगरानी के साए में इन्हें जीना पड़ता है।
1: जी सर फिरोशी, एंड टू स्ट्रेंथन दिस ग्लोबल मूवमेंट, द यूनाइटेड नेशंस फुल ब्लू हार्ट कैंपेन हैज बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी विद सर्वाइवर्स एंड अ रिमाइंडर ऑफ द कोल्ड हार्टेडनेस ऑफ दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।
0: और विश्व भर में तो मानव तस्करी को रोकने के लिए उपाय किए ही जा रहे हैं अनुजा। भारत की बात करें तो यहाँ भी सरकार ने कानून लागू करके, जागरूकता अभियान चलाकर, बच्चों की सुरक्षा के उपाय करके और हेल्पलाइन शुरू करके तस्करी रोकने की कोशिशों को मजबूत किया है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई जिसका हम सभी को सामना करना पड़ेगा अनुजा, वो ये है कि सिर्फ कानूनों से तस्करी को खत्म नहीं किया जा सकता।
1: एब्सोल्युटली, कम्युनिटीज, फैमिलीज, एम्प्लॉयर्स, स्कूल्स एंड एवरी सिटीजन हैव अ रोल टू प्ले। देयर इज अ फेमस सेइंग ऑफन एट्रिब्यूटेड टू एडमंड बर्क, All that is necessary for the triumph of evil is that good people do nothing. And the history behind this observance is equally significant. In 2013, the

0: United Nations General Assembly designated 30th of July as the World Day Against Trafficking in Persons to raise global awareness about this crime, strengthen efforts to protect the victims and bring the traffickers to justice.
1: बिल्कुल अनुजा, और आज का जो ये दिन है, ये हम सब मिलकर हम सबको ये बात एक बार फिर दोहरानी चाहिए कि आज़ादी किसी के लिए विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति की तस्करी होती है तो मानवता अपना एक हिस्सा खो देती है, लेकिन जब एक जिंदगी बचाई जाती है तो उम्मीद की जीत होती है. अनुजा, अब समय हो चला है कि अपने श्रोताओं को लेकर चलें देश भर की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि आज के अंक में हमारे लिए उनके पास क्या खास जानकारी है.
0: सो लेट्स गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री फर्स्ट. कोहिमा
1: जी.
0: Safe drinking water and improved sanitation are essential for healthier and more resilient rural communities. And in Nagaland, Zunheboto district is making steady progress towards these goals through the successful implementation of flagship programs such as the Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission Grameen. Our correspondent has a special report on this.
2: Zunheboto district in Nagaland has achieved 95.46% rural household tap water coverage under the Jal Jeevan Mission. Of the district's 33,089 rural households, functional household tap connections have been provided to 31,588 households, leaving just 1,501 yet to be connected. Under the Har Ghar Jal program, all 186 villages in the district have been covered, while 162 villages have already achieved 100% household tap water connectivity. To ensure community ownership and sustainable management of water supply systems, village water and sanitation committees have been constituted in every village. The district is giving equal emphasis on sanitation, hygiene and the long-term sustainability of rural infrastructure. Under the Swachh Bharat Mission Grameen, Zunheboto now has 162 ODF Plus villages, including 116 ODF Plus model villages. Officials are working to achieve 100% ODF Plus status across the district by October through better waste management and stronger community participation. With sustained implementation of these flagship programs, Zunheboto is transforming its rural communities by ensuring access to safe drinking water, promoting cleaner surroundings, and improving the overall quality of life for people across the district. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashwani News, Kohima.
1: और अनुजा, अपने श्रोताओं को कोहिमा से लेकर अब चलेंगे जयपुर, जहां बाघ संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं. एक ओर सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों की अटखेलियों के चलते हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है. दोनों अभयारण्य राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस पर हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी दे रहे हैं.
3: अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला जहां आपस में जुड़ती हैं, उन्हीं तलहटियों में मौजूद है बाघों के लिए एक सुरक्षित आशियाना रणथंभौर बाघ परियोजना. तकरीबन 1500 वर्ग किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र को वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला. वर्तमान में यहां करीब 700 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 72 नर और मादा बाघ और उनके शावक विचरण करते हैं, और इसी वजह से ये अभ्यारण्य लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानी, फोटोग्राफर, मूवी मेकर तथा रिसर्चर्स की पहली पसंद बन चुका है. वर्ष 2008 के बाद से यहां से कई वन क्षेत्रों में टाइगर रिलोकेट भी किए जा चुके हैं. अगर सरिस्का की बात करें तो इसे साल 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और ये देश का 11वां टाइगर रिजर्व बना. यहां भी बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. हाल ही में बाघिन ST-17 ने 4 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. इन नए शावकों के जुड़ने से सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर अब 56 हो गई है. बढ़ती बाघ आबादी और अभयारण्यों की पर्यटकों के बीच अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल करने में प्रशासन, वन विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय लोगों का भी बड़ा योगदान है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ.
0: And now let's go to Goa, Sarfirozi, where the center is continuing to strengthen tourism infrastructure in the state through major development projects aimed at improving visitor experience and creating new opportunities for the state's tourism sector. We have a report on this.
4: The Union Government has sanctioned a number of tourism infrastructure projects for Goa under these schemes, including Swadesh Darshan 2.0, Prasad, Challenge Based

0: to destination development and the special assistance to states for capital investment. Among the key projects are the development of the Porvorim Creek Experience and the Kolwa Beach Experience under Swadesh Darshan 2.0. The center has also approved the development of Orvelam Waterfall in Maya Village under the Challenge-Based Destination Development Scheme. The Basilica of Bom Jesus has received support under the Prasad Scheme for improving tourism facilities. Under the special assistance to states for capital investment, major projects including the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Ponda and the town square at Porvorim have also received central support. These initiatives are expected to enhance tourism infrastructure, improve visitor facilities, preserve Goa's heritage and create new employment and livelihood opportunities, giving a further boost to state's tourism-driven economy. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि तेज बहती हवाएं हमारे देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं? पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता और उत्पादन दोनों मोर्चों पर शीर्ष स्थान हासिल कर गुजरात ने ये सिद्ध किया है कि ये बिल्कुल संभव है। अनुजा, ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है, तो हमारी जो संवाददाता है उस पर एक खास रिपोर्ट दे रही है।
2: केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात ने पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में और कुल बिजली उत्पादन दोनों मोर्चों पर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। 30 जून 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 16,086 मेगावाट तक पहुँची है। केवल स्थापित क्षमता ही नहीं बल्कि उत्पादन के मामले में भी गुजरात ने मील का पत्थर पार किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य ने पवन ऊर्जा से कुल 33,706 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो अकेले देश के कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। गौरतलब है कि पूरे भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता इस समय 57,400 मेगावाट के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश की 50% बिजली हरित स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसे साकार करने में गुजरात का यह मॉडल एक बेहतरीन मिसाल बन गया है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट।
3: And if we talk about the business news of the day, benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points or 0.35% to close at 77,928, while Nifty added 67 points or 0.3% to settle at 24,317. For more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. every day. And what do you have from the field of sports, Sir Firozi?
1: Anuja, सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है।
3: एंड द इंडियन मेंस टीम हैज स्टॉर्म्ड इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप्स इन ओंटारियो कनाडा। द फिफ्थ सीडेड इंडियन मेंस टीम डिफीटेड इंग्लैंड 2-1 टू रीच द semifinals. They will next face the United States.
1: श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
4: जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए।
5: गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया।
4: 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा

0: शत शत नमन।
1: हम आज मुतुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोटई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुतुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रही। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थी।
0: वो मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य भी थी और उसकी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थी। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष और मद्रास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। इन उपलब्धियों से भी ऊपर वो बाल विवाह और देवदासी प्रथा के विरोध में अभियानों सहित सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक चर्चित हैं।
1: मुतुलक्ष्मी के पिता एस नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुतुलक्ष्मी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। मुतुलक्ष्मी को अपने ननिहाल से विशेष लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायण स्वामी अय्यर ने परंपरा तोड़ी और मुतुलक्ष्मी को विद्यालय भेजा।
0: जब मुतुलक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक इससे कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदुकोट्टई के महाराजा ने उन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मुतुलक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया।
1: उन्होंने मुतुलक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुतुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुतुलक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया।
0: सन 1930 में मुतुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए।
1: मुतुलक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रही। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन।
2: आज ही जयंती है जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर की भी। ये मराठी और हिंदी सिनेमा की भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मराठी में 50 और हिंदी में लगभग 250 फिल्मों में अभिनय किया। इन्हें मुख्य रूप से मराठी फिल्म जिनमें ससुरवास, मीठ भाकर, भक्ति जाऊ शामिल हैं, इनके लिए जाना जाता था। साथ ही 1959 की फिल्म दिल दे के देखो से लेकर वर्ष 1995 तक हिंदी सिनेमा में निभाई गई माँ की भूमिकाओं के लिए भी ये प्रसिद्ध हुई। इन्होंने और रूपा रॉय ने 1959 से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक मां की भूमिकाओं को मूर्त रूप दिया। इन्हें महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब आपको सुनाते हैं इनकी फिल्म का एक गीत।

0: Friends, industry peers and colleagues are also wishing a very happy birthday to Sonu Sood, praising his transition from a versatile actor to a real-time hero and mentor who is now very famous for his humanitarian works during COVID times and many other disastrous times.
1: और बात करें इनकी फिल्मोग्राफी की तो इन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में शानदार अभिनय किया है.
0: Let's hear a dialogue in his voice.
2: कोई खोकर खा रहा है, कोई रोकर खा रहा है, इतना फर्क क्यों जब दुनिया एक ही खुदा चला रहा है. दुआ तो हर माँ की सच्ची होती है, फिर क्यों कोई बच्चा उठता और कोई गिरता जा रहा है. सलाम उन्हें जो संभलते हैं इन हालातों से गुजर कर, जो मिला है उसमें खुश रहो बंदिया और बस शुक्र कर, शुक्र कर.
0: And wishing a very happy birthday to the musical legend Sonu Nigam, who is not merely a singer, he's an emotion carried through melody, a memory wrapped in music, one of the most versatile and celebrated playback singers in the Indian music industry. Let's celebrate his legacy with some beautiful songs he has sung.

सोनू निगम ने बचपन से ही अपने करियर की शुरुआत गायन में कर दी थी और इन्होंने बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए। पहला गाना इन्होंने अपना दूरदर्शन के धारावाहिक तलाश जो 1992 में आया था उसके लिए गाया। इसके बाद फिल्म आजा मेरी जान के गाने ओ आसमान वाले जमीन पर से बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया। इसके अलावा हिंदी के अलावा कन्नड़, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी और छत्तीसगढ़ी में भी ये गाना गा चुके हैं। सोनू निगम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर

0: நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. 3:10 இனிய ராகம். உஸ்தாத் அம்ஜத் அலிகான் அவர்களின் சரோட்டிசை. அதிகாலை 4:10 பொங்கு மங்கலம். திருப்புலிவனம் இ அரிதாஸ் குழுவினரின் நாகஸ்வர இசை. 5:10 புலரும் பொழுது. 6:10 தேனிசை. 7:15 திரை இசை. 7:30 ஆத்சவேரே. 8:30 திரை கானம். 9:00 அரங்கிசை. சோழவரம் என் வெங்கடேசன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை. வேலூர் SMS ஜெகநாதன் அவர்கள் தவில். 10:10 விஸ்வதர்பன். 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லி அஞ்சல். 10:30 சுகமான ராகங்கள். 11:10 திரைகானம். 11:30 மல்லே பூத்தண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சி. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி மோகனராவ் அவர்களின் உரை. 12:00 திரைகானம். 12:40 மெல்லிசை. 1:10 இசை மலர். பி லலிதா மாதவ் அவர்களின் பாட்டு. வி எல் குமார் அவர்கள் வயலின். திருவிடை மருதூர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம். 2:30 திரைகானம். 3:00 மதுரம் மதுரம் ஈ சமயம். 4:10 தேநீர் நேரம். 4:20 எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ். 4:25 ரோஸ்கர் சமாச்சார். 4:30 பரிக்ரமா டெல்லி அஞ்சல். 5:00 அரங்கிசை. ஏ கே மகேஷ் அவர்கள் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்கள். கும்பகோணம் எம் ஆர் கோபிநாத் அவர்கள் வயலின். கே வி பிரசாத் அவர்கள் மிருதங்கம். 6:05 நிகழ்ச்சி நிரல். 6:10 விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல். 6:30 இரவு 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல். 7:10 இளைய பாரதம். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் த கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் ஆஃப் லைஃப். பி சஹேரா வழங்கும் உரை. த வாய்ஸ் ஆஃப் த காமன் பீப்புள் முன்ஷி பிரேம் சந்த் வழங்கும் உரை. தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சேயிங் நோ யுக்தி பி மெஹானி வழங்கும் உரை. நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं जागृति शर्मा. आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है. हाल ही में भारत सरकार ने इस योजना की प्रगति और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण जारी किया है. ये योजना देश के प्रतिष्ठित शीर्ष रैंक वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को बिना किसी और बिना किसी गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है. साथ ही पात्र छात्रों को पारिवारिक आय के आधार पर ब्याज छूट के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिससे उच्च शिक्षा हासिल करने में आने वाली आर्थिक तंगी कम होती है. पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाई गई है. लेकिन श्रोताओं, ये योजना केवल शिक्षा ऋण देने तक सीमित नहीं है. ये योजना भारत को सतत विकास लक्ष्य 4 यानी SDG 4 की दिशा में प्रगति करने में योगदान देती है. SDG 4 का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है. ये पहल शिक्षा में समान अवसर, सामाजिक समावेश, आर्थिक सशक्तिकरण और विकसित भारत के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने से भी जुड़ी हुई है. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे. आज के कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल रहे हैं और ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूत बना रही है. श्रोताओं, पिछले एक दशक में भारत में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ा है. वर्ष 2014-15 में जहां उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात लगभग 23.7% था, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 30% तक पहुंच गया है. हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी उनके सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात पर जोर देती है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा केवल आर्थिक कारणों से बाधित नहीं होनी चाहिए. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनेक अवसरों पर कह चुके हैं कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब

0: देश का प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़े।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना इसी सोच को व्यावहारिक रूप देती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में।
2: प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटर के शिक्षा ऋण दिया जाता है। वर्तमान में देश के 1425 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान इस योजना के दायरे में आते हैं। इनमें केंद्रीय संस्थानों के साथ साथ NIRF रैंकिंग के आधार पर चुने गए प्रमुख सरकारी और निजी संस्थान भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से जुड़े लगभग सभी आवश्यक खर्चों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस शुल्क, लैपटॉप, अध्ययन सामग्री तथा अन्य शैक्षणिक व्यय भी शामिल हैं। सभी आय वर्गों के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने बैंकों के लिए भी जोखिम कम करने की व्यवस्था की है। 7.5 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 75% तक की क्रेडिट गारंटी भारत सरकार प्रदान करती है, जिससे विद्यार्थियों को ऋण स्वीकृत होने में सुविधा मिलती है। इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर ब्याज दर भी सीमित रखी गई है। शिक्षा ऋण की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष तक होगी। इसमें पाठ्यक्रम की अवधि और उसके बाद 1 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल नहीं होगी। पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक होने पर पात्र विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। वहीं 4,50,000 रुपए तक की आय वाले विद्यार्थियों के लिए पहले से संचालित केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना के लाभ भी उपलब्ध हैं। योजना की पूरी प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है। विद्यार्थी एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं, बैंक का चयन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, ब्याज सब्सिडी का दावा कर सकते हैं और अपनी कोई शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिक्षा ऋण को अधिक सरल, पारदर्शी और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है।
0: श्रोताओं, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे और पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित तथा पारदर्शी हो। सरकार ने इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल रुपया वॉलेट और ऑनलाइन निगरानी जैसे अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की हैं। आइए विस्तार से जानते हैं अगली रिपोर्ट में।
3: प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। शिक्षा ऋण स्वीकृत होने के बाद पात्र विद्यार्थियों को ब्याज सब्सिडी सीधे पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपया ऐप यानी CBDC वॉलेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसे बाद में शिक्षा ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 22 जुलाई 2026 तक इस व्यवस्था के अंतर्गत 35,777 सक्रिय डिजिटल वॉलेट संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से 57,66,00,000 रुपए से अधिक की ब्याज सब्सिडी का वितरण संभव हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा ऋण के लिए पोर्टल पर 6,45,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,10,667 आवेदन प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत थे। इन आवेदनों में से 70,852 शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए और 67,728 ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि योजना का लाभ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। योजना सामाजिक और लैंगिक समावेशन को भी बढ़ावा दे रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में 2,76,000 से अधिक महिला विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया और बड़ी संख्या में उनके ऋण स्वीकृत भी हुए। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों सहित सभी पात्र वर्गों को भी समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर

कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन तथा अन्य सामाजिक समूहों के विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी इस योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है। सरकार ने वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनुमान है कि 7 वर्षों में लगभग 7

0: शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और समान अवसर आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिना जमानत शिक्षा ऋण, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और व्यापक संस्थागत कवरेज के माध्यम से ये योजना लाखों विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कुशल मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना केवल एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह। नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदि वन्दे मातरं गीताय वैधानिक संरक्षण विधेयकः पारितं गतः। लोकसभायां कार्याचरणं च स्थगितम्। प्रश्नपत्र कदाचार निरोधाय संशोधन विधेयकः राज्यसभायां विचाराधीनः। दिल्ली छात्र प्रदर्शने द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षितं रक्षयितुं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशः। महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अति वृष्टिपरा रक्त संचेतना उद्घोषिता ऋतु विज्ञान विभागेन। अपि च ग्लास्गो राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य कुंत प्रक्षेपकाः नीरज चोपड़ा, रोहित यादवः, यशवीर सिंहश्च अंतिम चरणे प्रविष्टवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकः 26,2000 पारितः। गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्द रायेण संशोधनार्थम् अयं विधेयकः उपस्थापितः। राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानं विधेयकस्यास्य मुख्योद्देश्यं वर्तते। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुम् अर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने, राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति। सः प्रावोचत् यत् 1971 प्रवर्तितेन अधिनियमेन राष्ट्रगानस्य आदरार्थं प्रावधानानि विहितानि। इतः प्राक् चर्चायां भागं भजन्ति डीएमके दलस्य के कनिमोझी इत्येषा अस्य विधेयकस्य विरोधम् अकरोत्। तया कथितं यदयं देशे जनानां विभाजनं करोति। अपरपक्षे विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन् बीजेपी दलस्य संबित पात्रा न्यगादीत् यत् अयं विधेयकः अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। सः अकथयत् यत् केन्द्रसर्वकारः गतवर्षस्य नवम्बर मासतः राष्ट्रगीतस्य 150 जयन्तीं राष्ट्रियोत्सवरूपेण समाचरति। सहैव नरेन्द्रमोदी सर्वकारः अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय वैधानिकसुरक्षां प्रददाति। राज्यसभायाम् अद्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं विचारणाय, पारणाय च संसत्पटले उपस्थापितम्। ह्यः विधेयकः लोकसभायां पारितं गतः। मध्याह्नोत्तरं यदा सदनस्य उपवेशनं पुनः आरब्धं तदा राज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः विधेयकं विचारणार्थम् उपस्थापितवान्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णनस्य विधेयकस्य चर्चायै 7 समयः निर्धारितः इति व्यज्ञापयत्। विधेयकस्यास्य मुख्याः नियमाः तावत् कठोरदण्डविधानं, यत्र हि अपराधिभ्यः 10 यावत् कारावासः, 10 कोटिरूप्यकाणां दण्डः, सम्पत्तेः अधिग्रहणञ्च विहितमस्ति। अन्यदस्ति त्वरित

0: न्यायालयानां स्थापना यत्र शीघ्र न्याय सुनिश्चेतुं विशिष्ट त्वरित न्यायालयानां स्थापना राज्य सर्वकारैः भवितव्यम्। अन्ते च वर्तते नियत काल सीमा यत्र आरक्षि स्थाने सूचना पंजीकरणात् मासद्वयाभ्यन्तरे अन्वेषणं पूर्णं भवेत्। अभियोगपत्र प्रस्तावनात् परं मासत्रयाभ्यन्तरे एव निर्णयो च भवेत्। विधेयकम् उपस्थापयन् डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः प्रावोचत् यत् विधेयकः छात्र युवकानां हितरक्षणाय सर्वकारस्य उच्चतम प्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं करोति। परीक्षा कदाचारं प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं प्रति च मोदी सर्वकारस्य शून्य सहिष्णुतायाः दृढ संकल्पो वर्तते। अपरत्र चर्चायाः प्रारंभं कुर्वन् राज्यसभायाः प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आक्षेपम् अकरोत् यत् सर्वकारेण अस्मिन् विधेयके केवलं बाह्य परिवर्तनमेव कृतम्, येन परीक्षा कदाचारस्य पूर्ण निरोधो नैव भविष्यति। सः प्रोक्तवान् यत् यद्यपि कांग्रेस दलम् अस्य विधेयकस्य समर्थनं करोति तथापि पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चेतुम् अस्मिन् इतोपि कठोर नियमानाम् अभावो दृश्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य केन्द्र सर्वकाराय प्रोक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे नवदिल्ल्याः जंतर मंतर स्थले विनियोजितस्य द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षिततया स्थापनीयमिति। सर्वोच्च न्यायालयेन विधि व्यवस्था पालनाय पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगे पूर्ण प्रतिबंधस्य याचनामधिकृत्य प्रश्नः उत्थापितः। न्यायालयेन आरक्षक अनुसंधान विकासाभिकरण संस्थायाः परामर्शमधिकृत्य कथितं यत् आरक्षिणः असाधारण स्थितिषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधिकृताः सन्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य सहैव न्यायाधीशयोः जायमाल बागची वी मोहन इत्येतेषां पीठिकया दिल्ली सर्वकाराय अपि आदिष्टम् यत् विरोध प्रदर्शनेषु ये भुशुण्डिकया व्रणिताः अभवन् तेभ्यः उत्तम चिकित्सा सौविध्यं प्रदातव्यमिति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अतिवृष्टेः संभावनां प्रकटय्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेनानेन आगामी दिनद्वयाभ्यन्तरे अरुणाचल प्रदेशे केरल माहे क्षेत्रेषु राजस्थान राज्ये च मेघगर्जन विद्युत्पातं समेत्य अतिवृष्टेः पूर्वसूचना प्रकटीकृता। उत्तर पूर्व भारते अपि आगामीषु द्वित्रि दिनेषु तीव्र प्रभंजन सहित विद्युतपातेन सह प्रबल वृष्टिः सेत्स्यति इति विभागेन अनुमानितम्। अत्रांतरे राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यामपि आगामीषु द्वित्रि दिनेषु मेघ वर्षणस्य संभावना वर्तते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां IASV त्रिवेणी इत्याख्यस्य सर्व महिला नौकायान अभियान दलस्य सदस्याभिः सह संवादम् अकरोत्। तासां चाद्भुताम् उपलब्धिम् अदम्य संकल्पं च भूरिशः प्रशंसन्स। अवसरेऽस्मिन् रक्षामंत्री अवदत् यत् तासां साफल्यपूर्णं सागर तरण अभियानं राष्ट्राय गौरवस्य विषयः वर्तते। श्रीसिंहः प्रोदीरितवान् यत् दलस्य एषा अलौकिकी उपलब्धिः वर्तते।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: पाकिस्तानाधिकृते जम्मू कश्मीरे सोमवासरे पाक सुरक्षा बलैः शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारिणां विरुध्य नृशंस

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद मनोज जी।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन, सेंसेक्स राइजेस ओवर 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,300। Most Asian stock market indices close in the negative zone and global crude oil prices fall.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 250 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से अधिकांश घाटे में रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ. हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.6% की गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. Sensex rose by 274 points, 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped over 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note as rising crude oil prices and escalating tensions in West Asia weighed on investor sentiment. After remaining range-bound for most of the session, both the benchmark indices edged higher during the final hour of trading.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर, तो सेंसेक्स में सम्मिलित 30 में से 15 कंपनियां आज लाभ में रही हैं, और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो प्रमुख

0: कंपनियां रही, उनमें मारुति सबसे ऊपर है, इसके शेयर 1.8% लाभ में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ। रिलायंस के भाव 1.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही अदानी पोर्ट्स, जिसे 3.3% का नुकसान हुआ। इंडिगो के शेयर 0.9% नीचे आ गए। बजाज फिनसर्व में 0.8% की गिरावट हमने देखी।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 27 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dipped 2.1%, housing finance dipped 1.3%, and mid-small private banks' quality tilt fell 0.8%. In contrast, auto rose by 1.6%, energy advanced over 0.7%, and consumer discretionary gained 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,630 companies declined, 1,601 companies advanced, and 176 companies remained unchanged.
0: नजर डालें रुपए की स्थिति पर, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 95.68 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत जी, बाजार में आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्रमुख सूचकांक तो बढ़त में रहे हैं, लेकिन विस्तृत बाजारों में निफ्टी पैक का 100 और यानी स्मॉल पैक और मिड कैप दोनों में हमने कमजोरी देखी, क्या दर्शा रहा है ये बाजार?
2: मनोज जी, देखिए बाजार जो है बहुत ही मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग मोड़ पर अभी खड़ा है। कई प्रकार के फोर्सेस इस वक्त शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं, वो कुछ उम्मीद से बेहतर हैं। कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं थोड़ा गिरावट है, लेकिन करीब करीब वो अच्छे प्रदर्शन हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के। हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहाँ हम बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं। जो एक AI ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेड था, जिससे जापान, कोरिया, और ताइवान जैसी मार्केट्स में बहुत बड़ी तेज़ी चल रही थी, वहाँ अचानक बहुत गिरावट आ रही है, तो उसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर पड़ता है। FIIs के रुख पर उस पर प्रभाव पड़ता है। और साथ में तो ये जो वेस्ट एशिया में आप वॉर का माहौल देख रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुल मिलाकर यदि मैं ये सब मिलाता हूँ, और ये सब बड़े फैक्टर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं है, इससे बाजारों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो हमारा प्रदर्शन भारत का अच्छा रहा है, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, क्योंकि IT क्षेत्र की कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी वहाँ पर हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी पिछले दिनों। कुछ अब हमने पिछले यदि 1 या 2 सप्ताह को देखें वहाँ बाइंग हुई है, और 15 से 20% उछाल भी आया है बड़ी IT कंपनीज के शेयर्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा निकाला था, हम वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। वहाँ पर FIIs के द्वारा बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, अभी लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, लार्जली IT स्टॉक्स में हमने देखा है थोड़ी बाइंग। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स हमारे सामने हैं, और कुल मिलाकर जो असर आ रहा है सामने वो अच्छा आ रहा है। लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, मिड कैप्स में जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स बढ़े हुए हैं, तो काफ़ी एक मिला जुला रुख है अभी बाजारों का।
1: Well, we saw the Nifty Auto Index go up by 1.6%. And typically, when you're looking at a purchase of a passenger vehicle, of course, you have, you know, other types of vehicles as well in the computation of the Nifty Auto. What do you think in terms of sales and the purchasing power of India? And this is in the context of the central bank also forecasting that for the financial year, they are projecting a growth of 6%, and this is amid all the geopolitical tensions and what's happening in West Asia, how we are directly affected by the movement of crude oil and gas through the Strait of Hormuz.
2: So Arjun, interestingly, automobile industry is taken as a bellwether for the larger economic trends. In India, we have seen that the passenger vehicle sales have been quite robust in spite of all the pressures that you mentioned.
1: And let's not forget that interest rates also play a very important role.
2: Interest rates are important. We recently had the FTA go into application vis-a-vis UK, and EU FTA is also coming into effect shortly. And in spite of it, we have seen that the purchasing power of the common Indian has been quite robust. And we have seen good sales.

0: politically.
1: So Arjun, if you ask me about the markets, my guess is that markets are consolidating at the present. We have not seen very large moves in the market. We see some small moves on a daily basis, but my guess is that post this consolidation in over the next 2 months, as we get closer to October, November, the busy season of the economy, my guess is we'll start doing very well. If I really have to put my money on something, I'd say the bull run in Indian markets will start somewhere around October, November. And I think I'm expecting a very significant move in the market in the next 6 months to 1 year.
0: Finally, if you look at the rupee to the dollar, the RBI says that the rupee is undervalued. FCNR deposits have in fact gone up, and we've seen that, we've taken that up in the last 2 days as well. But if you just look at the report here by the Ministry of Finance, so they're saying that because of what's happening in West Asia and the rising prices of crude oil, that's going to affect the currency and of course our other metrics in terms of the fiscal deficit and the current account deficit. How do you see India managing that?
1: So interestingly, I think this was a masterstroke by the finance ministry when they attracted, and they gave incentive for FCNRB deposits to be attracted by NRIs in India. And this is, we've seen this scheme is open until September, but my guess is that we are going to come out with some huge numbers of foreign exchange mobilization through the FCNRB scheme. And it could be a real surprise because and the whole concern about India's depleting foreign exchange reserves and the pressure on the external accounts, I think that will be really put behind us. It's really a masterstroke. The numbers we'll get, of course, by end of September. My guess is it will be upwards of $50 billion, maybe more even.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए. कंपनी के अनुसार वार्षिक आधार पर संचालन से प्राप्त समेकित राजस्व 27% बढ़कर 57,533 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. इस दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 33.6% बढ़कर 5,455 करोड़ रुपए दर्ज हुआ.
0: In more results, Bajaj Finance Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The firm's consolidated net profit increased by around 27% to 5,986 crore rupees on an annual basis. Bajaj Finance's net interest income increased by 23% year on year to 12,571 crore rupees.
2: आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां पर आज कुल मिलाकर गिरावट देखने को मिली. हालांकि कुछ बाजारों में निवेशक ने खरीदारी भी की. दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिकवाली के दबाव में 1.2% से अधिक नीचे आ गया. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% घाटे में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई. ताइवान का ताई एक्स 0.2% से अधिक नीचे आकर बंद हुआ. इसके विपरीत जापान में खरीदारी तेज रही और निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लाभ में रहा. हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में 0.2% के आसपास की वृद्धि हुई. इस बीच बैंक ऑफ जापान की 2 दिन की नीतिगत बैठक आज शुरू हो गई. अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो यूरो जोन की अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में 0.4% की और यूरोपीय संघ में 0.5% की वृद्धि संबंधी आंकड़े आए हैं. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी खरीदारी चल रही थी. फ्रांस का कैक 40 1% ऊपर चल रहा था. लंदन के फुटसी 100 में 0.4% की वृद्धि थी, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.3% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था. इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को 3.75% पर स्थिर बनाए रखने के पक्ष में बहुमत से निर्णय दिया. हालांकि मौद्रिक नीति समिति के 3 सदस्यों ने बैंक दर को 0.25% बढ़ाने का सुझाव दिया था और इसे 4% करने के पक्ष में मतदान किया था.
0: पुनीत, लॉट्स हैपनिंग इन द एशियन एंड द यूरोपियन फ्रंट. कॉस्पी द इंडेक्स इन साउथ कोरिया was undergoing a steep fall. Circuit breakers were activated. Today it fell by only 1.2%. How do you see the AI boom and the fall in chip stocks? Do you see that continuing? Do you see that being arrested now? And along with that, Bank

0: Japan. What are they deciding?
1: So very interestingly, Arjun says that KOSPI fell only 1.2% today. Normally, a fall of 1.2% would be a big deal for the markets. But given the history of Korean markets in the past few days, where it falls by 5, 7, 10% every day and rose by 5, 7, 10%, very volatile. So, of course, 1.2% seems like a calm day for the markets, unfortunately. Korea, of course, is going through this. It's a very concentrated market. There are only 5, 6 large companies which constitute 60, 70% of the index. And most of them are dependent on this AI trade. We've seen a very sharp fall in all AI related stocks, and be they in Korea or in Japan or in Taiwan, with largely the Asian trade, and in Nasdaq, of course, in the US. It's been very volatile, and we have seen very sharp correction. My guess is that now we will see some kind of a fair valuation return to the markets. You mentioned Japan. See, Japan has this tremendous issue with currency depreciation, because yen is continuously falling against the US dollar. It leads to inflation, higher inflation in Japan, and therefore they will need to raise interest rates.
0: And carry trade.
1: And it really hurts, because if your currency is depreciating, the carry trade will inflict losses on all those who are borrowing in that currency. So my guess is that Bank of Japan decision will come tomorrow morning. They could raise rates, and that would mean again another shock to the world economy, because Japan provides a huge amount of liquidity to the global markets. So it's still work in progress, but I guess we'll wait and see how it goes.
2: Puri ji, Europe se jo aankde aaye hain, Euro area ka alag aur Euro, matlab keh lein ki Europe Sangh ka alag, 0.4% aur 5% ki यानी बढ़त क्या दर्शा रही कि आने वाले दिन वहाँ अपेक्षाकृत अब सुधरने वाले हैं?
1: देखिए, यूरोप का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ पा रही है. हालांकि अमेरिका, अगर यूरोपियन जोन की अगर हम बात करें, जो इकोनॉमी का साइज है वो करीब करीब अमेरिका के बराबर है. करीब करीब $40 trillion का इकोनॉमीज हैं ये. अमेरिका की थोड़ी सी बड़ी है. उसके बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी करीब 1.5 से 2% अभी भी एनुलाइज ग्रोथ कर रही है, लेकिन यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो 0.4% 0.5% ग्रो कर पा रही है. उससे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जनरेट हो रही है, रेवेन्यूज भी नहीं हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पॉलिटिकल भी उस उथल पुथल उस कारण से हो रही है. यूरोप के लिए भी चैलेंज रहेगा ये, एंड यूरोप हैज़ टू रियली री इन्वेंट इटसेल्फ. मुझे नहीं लगता कि यूरोप का आज इकोनॉमिक डोमिनेंस वर्ल्ड में उतना है, और लगातार वो घटता जा रहा है उनका, तो ये चैलेंज है.
2: हाँ, यानी यहाँ पर एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यूरोप एज ए जोन कह ले, या यूरोपीय संघ भी, कभी दुनिया के इंजन के रूप में देखे जा रहे थे. फिलहाल क्या जो रूस और यूक्रेन का लगातार चल रहा कुछ वर्षों का युद्ध पूरे जोन को पीछे धकेल रहा है?
1: बिल्कुल, आपने सही कहा. यह भी एक बहुत नेगेटिव एक उनके लिए फैक्टर रहा है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़े, उससे उनकी इकोनॉमी में असर पड़ा. और जो अब यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है, उससे भी यूरोपीय इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि वहां फिर उससे उनकी कंजम्पशन पे, जो ट्रांसपोर्टेशन है, सब पे असर पड़ता है.
2: और डिफेंस खर्चा,
1: और वो
2: हर देश का डिफेंस खर्चा वो
1: बढ़ाना, उनको बढ़ाना पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां अफेक्ट हो रही है. तो यूरोप के लिए काफी चैलेंजिंग डेज है ये.
0: Let's move on to the U.S. stock market. Major U.S. Stock market indices hit persistent inflation concerns. Let's hear what Fed Chair Kevin Warsh said in the post-meeting policy statement.
3: The committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The committee is continuing its policy of making ample reserves in the banking system. The economy is showing impressive resilience. Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. Inflation remains elevated relative to the committee's 2% goal. The committee remains resolute. You've heard this before, but we will deliver price stability.
0: The promise of price stability by Kevin Warsh, the Fed chair, inflation target above 2% has been on for 63 months now in the US, and there has been job gains as well. As he mentioned, the rate setting committee was in favor of leaving the discount rate unchanged by 9 to 3, between 3.5% and 3.75%. inflation right now in the US is 3.5% for the month of June. There is also a similar comparison to what's happening in England. The Bank of England has also kept its policy rate unchanged at 3.75%. So what is the thinking right now

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई।

गई है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 2020 பிரேக் எடுத்தியா?
1: அது என்ன 2020 பிரேக்?
0: 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 20 செகண்ட் வந்து நம்ம பிரேக் எடுக்கணும். அந்த டைம்ல எழுந்திரிச்சு நிக்கிறது இல்ல லைட்டா கழுத்து கைய அசைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இதுதான் எல்லா டாக்டர்ஸும் அட்வைஸ் பண்றாங்க. சோ எவ்வளவு நேரம் வேணும்னாலும் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஆனா 2020 பிரேக் எடுத்துட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க. நம்ம ஆரோக்கியம் நம்ம கையில.
2: இன்னும் சில நொடி
3: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल

सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाई। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराय, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, BRS के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்துக்கு உட்பட்ட சுமார் 60 கோடி மக்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிமையாளர்கள். 12 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இதுவரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஏழை குடும்பங்களின் மருத்துவ செலவில் சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் செயலியை இன்றே பதிவிறக்கம் செய்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் தகவல்களுக்கு 1455 என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।

0: आपको सही दिशा दी जाती है।
1: आप अकेले नहीं है,
0: मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
2: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
4: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
2: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
7: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों

0: वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
2: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी

0: मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नुआपड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: ஹிஸ்டரி வைட். ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राकेश जी। भारत

0: आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
1: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चलें तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है
0: जी
1: कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
0: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है और डिस्प्ले की बात करते हैं हम, फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
1: देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं।
0: जी
1: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क HFCL जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे।
0: जी एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है, तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की है, तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
1: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजित किया गया है। ये फेज 1 में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इकोसिस्टम भी वहां पर लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो
0: जी
1: ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूँ। इंडस्ट्री के लोग जो है ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं और इंडस्ट्री के साथ कॉपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो है अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में अगर एक अलग है और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
0: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है, तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे, क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
1: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSL MTL के नेटवर्क में गैलोर और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है।
0: जी
1: मे भी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है।

0: करीब 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है, मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम 10,000 करोड़ की मार्केट में, हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में।
1: जी,
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS में जीता है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या इंडिया लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है।
1: जी।
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
1: जरूर।
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप के और की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000 रुपीज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इंटू डॉलर, तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी। और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है। तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इंडिया में इस तरह करने की बहुत क्षमताएं हैं और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपैरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हो तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए।
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स उसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है। करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है। UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं। तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावना है, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव-गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218। आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सेटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती हैं। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है, तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आप

0: वो खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही
1: जी
0: है। अभी गांवों में तालाब हैं तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए तो वो भी आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए वो ठीक है या कम है वो आपको पता लग जाएगा।
1: जी
0: आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं।
1: जी
0: हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिल्ली में, अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं तो आपको रिजल्ट्स कब मिलते हैं, नॉर्मली आपको रिजल्ट्स अगले दिन तक ही मिल पाते हैं। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे।
1: जी
0: और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो कंसल्टेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है।
1: जी
0: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गाँवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गाँव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3,580 के लिए प्रयास कर रही है और इसी साल में 75 इसी तरह के गाँव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
1: जी थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने 7 फरवरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था। 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई थी। सैटेलाइट में हमारे ही कुछ पेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े,
1: जी
0: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक में बहुत आपको आश्चर्य भी होगा कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं
1: जी
0: और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही रेडी विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है,
1: जी
0: ये इंडिया में होने जा रहा है।
1: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है।
1: जी
0: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्रीज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं,
1: जी
0: हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी
0: क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था

0: में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि कश्मीर द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकोण स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders.

0: मोटो भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 125 से अधिक होने का दावा किया है। एक रिपोर्ट।
1: जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलियां चलाने और अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और POJK में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। कब्जे वाले क्षेत्र में कराए जा रहे तथा कथित चुनावों के समय प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। भारत ने इन चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। नए हमलों से अन्य देशों के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी केंद्र और रक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि केशन द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। ये ताज़ा झड़पें अमरीका के सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमलों के एक दिन बाद हुई है। हमलों में कथित तौर पर कम से कम 20 लड़ाके और 6 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे गए थे। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमरीका के मिसाइल भंडार में कमी आने की खबर है। एक थिंक टैंक CSIS की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीनों में अमरीका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट और थार्ड वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इससे इन मिसाइलों का भंडार काफी घट गया है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लिस्टुक्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये हमले किए गए थे। जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मृतकों में 9 लोगों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी मौत भूकंप की वजह से हुई है या नहीं। भूकंप से यात्सुशिरो शहर में एक कागज फैक्ट्री की चिमनी गिर गई। मलबे से 10 लोगों को निकाला गया, जिनमें 8 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। एक अन्य लापता व्यक्ति का शव भी आज बरामद किया गया। वहीं काशिमा कस्बे के एवॉन मॉल कुमामोटो में भूकंप के बाद हुए बड़े विस्फोट के बाद 12 लोगों को बचाया गया। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रांत में 406 राहत शिविरों में 9,400 से अधिक लोग ठहरे हुए हैं। भूकंप के कारण करीब 79,700 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित है जबकि 19,000 घरों

0: में अब भी बिजली नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कांगो सरकार के अनुसार लगभग एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि इबोला अधिक तेजी से फैल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तक इस प्रकोप में 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बोगियो वायरस के लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। इसने पिछले किसी भी इबोला प्रकोप की तुलना में अधिक लोगों की जान ली है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। भूटान ने देश के विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्फू इकोलॉजी पार्क और उलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। दूतावास ने बताया कि भारतीय एक्जिम बैंक और भूटान के वित्त मंत्रालय के बीच 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण गारंटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और भूटान के खेसर ग्यालपो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर भूटान की सरकार को 45 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। नीरज 5वें जबकि रोहित और यशवीर 9वें और 10वें स्थान पर रहे। वहीं प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। चित्रावेल ने 2रा, सिल्वा प्रभु ने 3रा स्थान हासिल किया। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तानिया हेमंत और राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचएस प्रणव हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। जापान के कुमामोटो भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुडा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. Protests intensify in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir amid deadly crackdown by Pakistani forces. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Death toll from Japan's Kumamoto earthquake rises to 34, more than 9,000 people.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने दोस्तों। दोस्तों रेडियो जो है ना वो बहुत अच्छा माध्यम होता है दिल की बात करने का। कैसे? देखिए अब आप हमें नहीं देख सकते, हम आपको।
1: Good evening, folks. This is Akashvani Chennai, and you're listening to 100.1 FM Gold, where timeless music still has the last word. I am Dinakaran Singer.

0: Time now is 11 p.m. and coming up is the news in Hindi.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना

0: होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man.

में खरीदारी से बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 250 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से अधिकांश घाटे में रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ. हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.6% की गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. Sensex rose by 274 points, 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped over 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note as rising crude oil prices and escalating tensions in West Asia weighed on investor sentiment. After remaining range-bound for most of the session, both the benchmark indices edged higher during the final hour of trading.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर, तो सेंसेक्स में सम्मिलित 30 में से 15 कंपनियां आज लाभ में रही हैं. और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो प्रमुख कंपनियां रही, उनमें मारुति सबसे ऊपर है. इसके शेयर 1.8% लाभ में रहे. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ. रिलायंस के भाव 1.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही अडानी पोर्ट्स, जिसे 3.3% का नुकसान हुआ. इंडिगो के शेयर 0.9% नीचे आ गए. बजाज फिनसर में 0.8% की गिरावट हमने देखी.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 27 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dipped 2.1%, housing finance dipped 1.3%, and mid-small private banks quality tilt fell 0.8%. In contrast, auto rose by 1.6%, energy advanced over 0.7%, and consumer discretionary gained 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,630 companies declined, 1,601 companies advanced, and 176 companies remain unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ. 95.68 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. पुनीत जी, बाजार में आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्रमुख सूचकांक तो बढ़त में रहे हैं, लेकिन विस्तृत बाजारों में निफ्टी पैक का 100 और यानी स्मॉल पैक और मिड कैप दोनों में हमने कमजोरी देखी, क्या दर्शा रहा है ये बाजार?
2: मनोज जी, देखिए बाजार जो है बहुत एक मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग मोड़ पर अभी खड़ा है. कई प्रकार के फोर्सेस इस वक्त शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं. एक तरफ हम देखते हैं कि जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं, वो कुछ उम्मीद से बेहतर हैं. कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं थोड़ा गिरावट है, लेकिन करीब करीब वो अच्छे प्रदर्शन है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के. हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहाँ हम बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं. जो एक AI ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेड था, जिससे जापान, कोरिया, ईश और ताइवान जैसी मार्केट्स में बहुत बड़ी तेजी चल रही थी, वहाँ अचानक बहुत गिरावट आ

0: picture here is mixed. We can't say that banking is going through a certain kind of a trend right now. We see the larger banks, particularly private sector banks, not doing that well. We see a lot of traction in the smaller banks. It could be a reset of the trade that we have seen in the past many years.
1: Puri ji, yahan par hum aapka dhyan aakrishit karna chahenge. Khas taur se aapne kaha ki companies ke parinam आशा तीत, यानी कह लें कि हम जो उम्मीद कर रहे थे उसे कहीं बेहतर क्षमता निकल के आ रही है, और ऐसे ही कुछ आंकड़े वित्त मंत्रालय ने अपनी आर्थिक समीक्षा कह लें इस महीने के लिए, जुलाई के लिए जो जारी की है, उसमें दी है कि विपरीत स्थितियों के बावजूद हमने आयात निर्यात के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर क्या जता रहा ये भारतीय जो शेयर बाजार है उसकी भी स्थिति? हालांकि ठीक है अभी हम कम हैं, लेकिन कुल

0: आशातीत, यानी कह लें कि हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं बेहतर क्षमता निकल के आ रही है। और ऐसे ही कुछ आंकड़े वित्त मंत्रालय ने अपनी आर्थिक समीक्षा कह लें इस महीने के लिए, जुलाई के लिए जो जारी की है, उसमें दी है कि विपरीत स्थितियों के बावजूद हमने आयात निर्यात के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर क्या जता रहा ये भारतीय जो शेयर बाजार है उसकी भी स्थिति? हालांकि ठीक है अभी हम कम हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी वृहत आर्थिक पैमाने हैं वहां पर ये सब आंकड़े, एक और कंपनियों का प्रदर्शन, दूसरी ओर आर्थिक समीक्षा के जो उम्मीदें जताई गई हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं?
1: देखिए मनोज जी, बहुत ही, मैंने जैसे पहले कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग ट्रेंड्स इस वक्त एक साथ हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभाव डाल रहे हैं। और अगर हम देखें तो जैसे जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किए, वो दिखाते हैं कि भारत की जो कंजम्पशन है, अगर जीएसटी डेटा देखें हम, अगर हम दूसरे आंकड़े देखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया नंबर्स आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दर्शाता है। अब वहां पर उम्मीद नहीं थी, हमें लगता था इन्फ्लेशन है तो शायद वहां पर थोड़े कंजम्पशन कम होगी या प्रोडक्शन कम होगी, ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि बहुत सारे वेरीड फैक्टर्स हैं, पर जो नेट पिक्चर आ रही है वो एक बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी की आ रही है। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये थोड़े संकट के बादल छटेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, मुझे लगता है भारत की इकोनॉमी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिग जंप इन द ग्रोथ।
2: Puneet, whenever we talk about that jump in tangible terms, you know, we look at the market and the FIIs have been buying heavily into the futures market. That's what we saw in the data today, the F&O market. Is that reflecting what's happening in terms of core industries? You mentioned about the index for industrial production, manufacturing has picked up. We can also see that in the PMI data. So looking at June and July, you also have the services index, the ISP, that has come out. Do you see a bull run coming into the market despite what's happened geopolitically?
1: So Arjun, if you ask me about the markets, my guess is that markets are consolidating at the present. We have not seen very large moves in the market. We see some small moves on a daily basis, but my guess is that post this consolidation in over the next 2 months, as we get closer to October, November, the busy season of the economy, my guess is we'll start doing very well. If I really have to put my money on something, I'd say the bull run in Indian markets will start somewhere around October, November. And I think I'm expecting a very significant move in the market in the next 6 months to 1 year.
2: Finally, if you look at the rupee to the dollar, the RBI says that the rupee is undervalued. FCNR deposits have in fact gone up, and we've seen that, we've taken that up in the last 2 days as well. But if you just look at the report here by the Ministry of Finance, so they're saying that because of what's happening in West Asia and the rising prices of crude oil, that's going to affect the currency and of course our other metrics in terms of the fiscal deficit and the current account deficit. How do you see India managing that?
1: So interestingly, I think this was a masterstroke by the finance ministry when they attracted, and they gave incentive for FCNRB deposits to be attracted by NRIs in India. And this is we've seen this scheme is open until September, but my guess is that we are going to come out with some huge numbers of foreign exchange mobilization through the FCNRB scheme, and it could be a real surprise. Because And the whole concern about India's depleting foreign exchange reserves and the pressure on the external accounts, I think that will be really put behind us. It's really a masterstroke. The numbers we'll get, of course, by end of September. My guess is it will be upwards of $50 billion, maybe more even.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए। कंपनी के अनुसार वार्षिक आधार पर संचालन से प्राप्त समेकित राजस्व 27% बढ़कर 57,533 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 33.6% बढ़कर 5,455 करोड़ रुपए दर्ज हुआ।
2: In more results, Bajaj Finance Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The firm's consolidated net profit increased by around 27% to 5,986 crore rupees on an annual basis. Bajaj Finance's net interest income increased by 23% year on year to 12,571.

0: 10.1 टन के आसपास रही। गौरतलब है कि सोने की मांग में यह कमी कई कारणों से आई है। इनमें कस्टम शुल्क अधिक होना, साथ ही इस अवधि में सामान्यतः सोने की खरीदारी कम किया जाना और ध्यान देने वाली बात यह भी कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोने की खरीदारी घटाने की भी अपील की थी। कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे सोने की मांग घटना?
1: मनोज जी देखिए, भारत करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सोना हम हर साल इम्पोर्ट करते हैं, तो यदि वहां पर हम 10 से 15% इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट करी, मुझे लगता है बहुत बड़ी सेविंग्स होगी हमारे लिए। वो ट्रेंड चल भी रहा है तो वो अच्छा लगे, पॉजिटिव ट्रेंड।
2: मूविंग ऑन टू द बुलियन मार्केट, इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग 0.4% अप एट 1,43,340 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% up at 2,19,580 rupees per kilogram a short while ago.
0: आइए आपको लिए चले MCX, वहां अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.5% से थोड़ा बढ़कर 1,42,582 rupees प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध की चांदी 0.4% बढ़त के साथ 2,18,303 rupees प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी, हम आपको कार्यक्रम के समापन में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद पुनीत जी।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end with modest gains. Sensex rises over 250 points. Nifty settles above 24,300. Most Asian stock market indices close in the negative zone. And global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य

0: सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை துள்ளாத மனமும் துள்ளும், சங்கமம் ஆகிய படங்களில் இருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
2: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार

0: पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। मेघालय सरकार ने वर्नी हाट में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक वायु शुद्धिकरण उपकरण लगाने का फैसला किया है। इस बारे में राज्य के मंत्री और जिरांग के विधायक सोस्थेनीज सोहतुन ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that the investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said this issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country. Mr. Singh also listed the government's effort to prevent paper leaks and to reform the education system in the country. He said, youth are a huge investment for a Viksit Bharat. Earlier moving the bill in the House, Dr. Jitendra Singh said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Later, the House was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. today. The Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha passed the legislation on Wednesday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance, and counseling to seafarers.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के

0: समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता है। महिला वर्ग के 57 किलोग्राम फाइनल में उन्होंने अमेरिका की एपेनेसा एलिसन से 6-0 से हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग के 49 किलोग्राम में कामना बाबल ने कांस्य पदक मुकाबले में रूस की इरिना तिसदेवा को 2-3 से हराया। वहीं 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने स्पेन की पाउला वेनाइक्सा पेरेस को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of the convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track codes for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh, said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." Mr. Singh also listed the government's efforts to prevent paper leaks and to reform the education system in the country. He said, "Youth are a huge investment for a Viksit Bharat." Earlier moving the bill in the House, Dr. Jitendra Singh said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Later, the House was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. today. The Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha passed the legislation on Wednesday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, yesterday to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all the developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance and counselling to seafarers and their families. He also emphasised the usage of renewable energy sources in order to ensure energy independence. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government

0: நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அக்னி நட்சத்திரம் மற்றும் அபூர்வ சகோதரர்கள் திரைப்படத்திற்காக சில பாடல்கள் உலா வந்து சென்றன. பண்பலகில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
2: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனிய ராகம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உஸ்தாத் அம்ஜத் அலிகான் அவர்களின் சரோதிசை கேட்டோம். பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
2: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। भूटान ने देश के विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय

मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिखतु दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारियों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्रित महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूट स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।